0: हेलो सत श्री अकाल दोस्तों, हाजरा मैं परमजीत तड्डा अपना प्रोग्राम रह के अपना मेला जेड़ा कि हर चौथे ऐतवार पेश किया जाता है। दोस्तों इस प्रोग्राम दे विच असी तुहानू वधिया वधिया गीत सुनांदे आ, पंजाबी नचदे टपदे गीत ते थोड़े जिहे रोमांटिक गीत। ते अज दे प्रोग्राम दे विच वी असी तुहानू थोड़े गीत सुनावांगे ते नाल कुछ गल्लां बातां करांगे। अज दे प्रोग्राम दे विच मैं एक स्पैशल गैसट लैके आई हाँ जिन्हां नाल मैं अज गल्लां करांगी, ते मैं तुहानू उन्हां दी इंट्रोडक्शन करवानी आ। मेरे स्टूडियो दे विच अज आए ने पैनी कौर जी नाल आपां गल्लां करांगे। ते क्योंकि अज शो च थोड़ी जी शुरुआत जिहड़ी आपां गीत दे नाल कीती है, तां करके हुण आपां गल्लां बातां शुरू करदे हां तुहाडे नाल। दोस्तों पहला तो बहुत बहुत ताड़ा धन्नवाद आन वास्ते पैनी कौर जी, ताड़ा बहुत बहुत स्वागत है ते स्टूडियो दे विच आने लई, तुसी अपना टाइम कढ़िया ते इस प्रोग्राम दे विच शामिल होने लई।
1: थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी, आई एम वेरी एक्साइटेड, नर्वस हाँ मैं थोड़ी जी सो बट हाँ मेरा फर्स्ट रेडियो इंटरव्यू। थैंक यू सो मच तुहाडे सारे स्रोतियां नूं भी जिहड़े सुन रहे हैं मेरी गलबात, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी।
0: नहीं नहीं सारे स्रोते आई थिंक जिहड़े सुनने वाले इंजॉय करनगे जरूर साडियां गल्लां बातां। अच्छा आपां शुरुआत करदे हां तुहाडे नाम तो जिससे कि पैनी कौर तुहाडा नाम मैनूं बहुत प्यारा लाइक अलग जिहा लगा, मैनूं जिस तरह लगता कि इंडो वैसटन कॉम्बीनेशन आ तुहाडे नाम दे विच। कौर दा नाम जदों असीं सुणदे आ ते पता है कि इह कुड़ी पंजाबण आ, ते पैनी तुसीं किस तरह अपना नाम चूज़ कीता, लाइक तुहानूं किसी ने सुजैसट कीता सी कि तुहाडा अपना मन सीगा?
1: नहीं बड़े लोग हैरान हुंदे ने मेरा नाम सुन के, बट मेरा नाम मेरे पेरेंट्स ने ही रख्या सी, इट्स नॉट लाइक कि मैं इत्थे आके एक्वायर कीता।
0: हाँ जी,
1: सो इट वॉज़ लाइक कि जदों साडी फैमिली दे विच बच्चे पैदा हो रहे सी ते सारे कजन्स दा नाम इट इज़ मोस्ट लाइक सारे करंसीज दे नाम ते रख्या गया। सो साडी फैमिली दे विच डॉलर है जिहड़े मेरे कजन है, फिर रूपी है मेरी खोर कजन, वी हैव येन मेरे खोर कजन, एंड then I have Rubel who is my real brother and मेरा नाम पैनी उस तो बाद पिया क्योंकि मैं सब तो छोटी सी।
0: ठीक है ठीक है, तो काफ़ी इंट्रस्टिंग गल है क्योंकि इस तरह लगता ना कि कई इंडिया तो जो बाहरली कंट्री दे विच आ जाते हैं थोड़ा जहा नाम चेंज करना चाहते हैं कि ईजी हो जड़े स्पैशली आस्ट्रेलिया ने उन्होंने प्रोनाउंसीएशन वास्ते, हाँ क्योंकि उन्होंने साढ़े जड़े ओरिजिनल व्डे नाम आ थोड़े औखे लगते हैं।
1: बिल्कुल
0: हाँ जी, ते तुसी थोड़ा जिहा स्रोतियां नूं ए वी दसो कि जिस तरह तुसी इंडिया दे विच सी के तुसी किस तरह चूज़ कीता कि आस्ट्रेलिया ही आना है, जां आपां कई वारी इंडिया दे विच हुंदे आ कि दिमाग च हुंदा कि आपां उत्थे कैनेडा दा सोचदे, अमेरिका च सोचदे, दा पेरेंट्स सानूं कहिंदे आ कि नहीं तू जा बाहर पढ़ाई कर ली, ते आस्ट्रेलिया ही तुहाडा किस तरह बनिया चूज़ करना?
1: ऑस्ट्रेलिया विच आई थिंक ऑपरचुनिटीज़ बहुत ने, अगर असी कंपेयर करिए कैनेडा नाल, लंडन नाल या फिर किसी होर कंट्री नाल। मेरे ब्रदर जिहड़े हैगे ओह यूके विच सैटल्ड ने, ते ऑलदो खुश ने, बट मैं कई बार उन्हां दी लाइफ ते अपनी लाइफ कंपेयर करदी हाँ तो मैं सोचदी हाँ मैं बहुत वधिया जगह सैटल हुई हाँ। सो या ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन अ पूल ऑफ अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ थ्रू आउट, सो मैं बहुत खुश हाँ एंड मैं बहुत थैंकफुल हाँ बाबा जी दी that they have you know chosen Australia for me. Kuch kismat da khel hi hunda I think ki tusi koi cheez jagah choose karde ho te tade layi bahut vadhiya workout ho jandi hai.
0: Haan ji oh te hai, tusi jis tarah honi dassya ki tade cousins ya brothers utthe UK de vich ne, te jis tarah unna ne tanu eh nahi kiya ki tu UK de vich Australia kyon ja rahi hai tu?
1: Mainu bilkul hai opportunity vi hai gi si ki main UK ja sakdi si, but mainu lagya ki Australia vich sara kuch hi kyunki bahut new hai, tanu opportunities zyada mildi hai, कंपीटिशन घट मिलता है, तुहाडे लई सक्सीड करना थोड़ा ईजीअर हो जाता है, नाले आई थिंक इत्थे बहुत सेफ्टी भी है। सेफ्टी एक बहुत वड्डा रीजन है जिहड़ा कुड़ियां अजकल इंडिया तो भी बाहर जाना चाहुंदियां ने।
0: हाँ जी हाँ,
1: ते आई थिंक ऑस्ट्रेलिया तो खासकर एडिलेड दे विच ते बहुत ज़्यादा साडी सेफ्टी दी टच छूट कदी कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
0: हाँ जी बिल्कुल, तो है लाइक जदों आपां दूसरे मुल्कां दीआं जिद्दां कैनेडा अमेरिका च देख रहे हैं उत्थे पंजाबी काफ़ी देर तो वसे हुए ने, आस्ट्रेलिया दे विच सारी यंग जनरेशन नवे नवे लोग आ रहे ने, थोड़े कु सालां तो आना शुरू हुए ने।
1: बिल्कुल
0: ते ओह आस्ट्रेलिया दे विच तुहानूं लाइक आ के ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਕ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕੀਤੀਆਂ?
1: ਮਿਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਆਈ ਮਿਸ ਦ ਫੂਡ ਲਾਈਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਆ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰੋਟ ਅਪ ਆਈਵ ਬੀਨ ਇਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਫੋਰ ਅ ਵਾਈਲ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਹਾਇਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੂਡ ਡੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਸੋ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗਵਾਉਣ ਦੀ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਫੂਡ ਇਜ਼ ਦ ਟੋਪ ਮੋਸਟ ਥਿੰਗ ਆਈ ਐਮ ਅ ਬਿਗ ਫੂਡੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖਾਣਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਡਿਫੀਕਲਟੀਜ਼ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ I think ਇੱਕ ਡੇਢ ਸਾਲ ਹੈਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀਨ ਹਾਰਡ ਫੋਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀ ਵਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਕੰਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀਦਾ ਸਟਰਗਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਸਟਰਗਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਕਿ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਆਏਗਾ ਮੇਰਾ ਵੀ ਆਇਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਹਾਰਡ ਟਾਈਮਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖੋ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਦੇਅਰ
0: ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹਰੇਕ ਦੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਸਟਰਗਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਫਲ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਪੈਣੀ ਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਪ ਹੁਣ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਪਸੰਦ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਲਜੀਤ ਦੋਸਾਂਝ ਜੀ ਦਾ ਗਾਣਾ ਪਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ
1: ਥੈਂਕ ਯੂ
0: ਸੁਣੋ ਇਹ ਗਾਣਾ